0: रेडियो सारंग 107.8 FM।
1: रेडियो सारंग 107.8 FM रंग रंग द बदुकु। பின்னரே பார்த்திருக்கிறேன்।

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया, वो छूट जाएगा।

0: अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: आप सुन रहे हो रेडियो सारंग 107.8 FM।